नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। 107.8 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी आरजे जयश्री आप सभी का मनोरंजन करने आई हूँ। आज का कार्यक्रम BBA शिफ्ट 2 की छात्राएं करेंगी। आज हम गुरु के बारे में बात करने वाले हैं। हमने ये विषय इसीलिए चुना है क्योंकि हर साल सितंबर 5 तारीख को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। जैसे हर कार्य हम भगवान से शुरू करते हैं, वैसे ही आज हम एक प्रार्थना गुरु और भगवान को समर्पित करने को आ रहे हैं सोनल, ट्विंकल और सोनू।

0: धन्यवाद दोस्तों, यह दिन हर गुरु के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हर विद्यालय में यह दिन धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब आपके सामने निमांशी एक भाषण सुनाने आ रही है।
1: माता पिता के बाद में अगर कोई हमारे जीवन में सही राह दिखाता है तो वह है गुरु। छोटे से हमें विद्यालय जाते हैं तो हमें वही संभालते हैं, हमको चुप कराने से लेकर हमको पढ़ाने का काम करते हैं। आज की दुनिया में पढ़ाई का इतना महत्व है, अगर गुरु न होते तो यह ज्ञान प्राप्त करना असंभव होता। हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, बाहर की दुनिया में बदलते वातावरण और कई विषय में वह अपना ज्ञान हमसे बांटते हैं। उनका हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान को कबीर ने अपने दोहे से बहुत अच्छे से समझाया है। वह दोहा कुछ ऐसा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे से वह यह कहना चाहते हैं कि अगर गुरु और भगवान साथ में प्रकट हो तो हमें पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने हमें गोविंद के बारे में सिखाया है। मैं अपना विषय यही समाप्त करना चाहती हूँ। हम सब छात्राओं की तरफ से सभी गुरु को सितंबर 5 के लिए शिक्षक दिवस के शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद निमांशी, तुम्हारे विचार बहुत ही अलग और अनोखे थे। तो अब गुरु वो है जो हमारी जिंदगी में सही और गलत के सीख देते हैं। और अब कीर्ति आपके सामने अपनी कविता की पंक्तियों से आप सभी का मनोरंजन करने आ रही है।
2: टीचर होती है एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं, कभी सुनाती एक कविता, कभी सुनाती एक कहानी, करे सभी जो हम शैतानी, कान पकड़े तो याद आए नानी, अच्छे काम पर मिले शाबाशी, टीचर बनाती मुझे आत्मविश्वासी। टीचर होती है एक परी, सिखाती हमको चीज नहीं। धन्यवाद।
0: अगर गुरु ना होते तो हम जिंदगी के कार्य में सफल कैसे होते। हमारे चेन्नई में बहुत गर्मी है, इसीलिए आस्था अब सबके लिए एक मॉकटेल की रेसिपी लेकर आ रही है जो आप सभी को ठंडा करवाए।
3: गर्मियों में हर दिल अजीज मिंट मॉकटेल। सामग्री: एक गड़ी पुदीना, दो अदरक के पीस कटे हुए, दो कप चीनी, चार नींबू का रस, काला नमक, सिंधौ नमक, दो छोटे चम्मच भुनी जीरा, दो पीपल, 10-12 काली मिर्च, दो लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, दो बड़े चम्मच शहद और बारीक कटे हुए तैयार की गई बर्फ। उसे बनाने की विधि: सबसे पहले पुदीना की पत्तियों को 2-3 पानी से अच्छी तरह धो ले। इसमें अदरक, काली मिर्च, जीरा, दोनों तरह के नमक, पीपल, लौंग और कटी बर्फ मिलाए और मिक्सर में चला ले। अब पानी मिलाकर छान ले। शहद पसंद करते हो तो शहद मिलाकर ठंडा ठंडा सर्व करें या पैक बनाकर रखें, जब पीना हो ताज़ा ही बनाएं।
0: धन्यवाद आस्था अपनी ठंडी ठंडी मॉकटेल की रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आपके सामने आ रही है चांदनी जे जो अपनी एक छोटी सी कहानी को लेकर।
4: एक मैं उन दिन गोविंदपुर हाई स्कूल का 10वीं वर्ग का छात्र था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, मुझे ट्यूशन पढ़ना जरूरी था क्योंकि वार्षिक परीक्षा सर पर थी और मुझे अच्छे अंकों की अंग्रेज और हिंदी में पास करना ही था। मैंने माँ से ट्यूशन पढ़ने की जिद करने लगा और मात्र 10 महीने पढ़ने के लिए 30 रुपये देने का आग्रह किया। माँ के पास तो पैसे ही नहीं था, वह कैसे देती, लेकिन मेरी जिद में दम था जिस वह काट नहीं सकती थी। वह जट अपने दोनों हाथों की चांदी के कंगन उतार कर मेरे हाथों में थमा दी और बोली, इन्हें किसी सोने बेच दो, तुमको 30 रुपए जरूर मिल जाएगा। माँ की इस बात से मैं काफी दुखित हो गया, लेकिन माँ ने मुझे धर्म संकट से उबरते हुए बोली, सोचते क्या हो, कंगन ही न जाएगा फिर कभी बन जाएगा, जब तुम अच्छी तरह पर लेकर आदमी बन जाओगे, ले जाओ और आज ही बीच डालो, साथ में सीताराम दादा के ले लेने ताकि तुम्हें बच्चा समझकर सोना तक न ले, ज्यादा सोचा मत कर कल ही ट्यूशन पढ़ शुरू कर दे। माँ ने इतने प्यार एवं दुलार से यह बात कहा गया कि मैं उनकी बात नहीं काट सका। माँ ने एक पोटली में दानों कंगन की अच्छी तरह बांध दी और मेरे को पुचकारे हुई घर के बाहर से आई और सामने बड़ी बांधे हुए दादा से और ईश्वर करते हुए बड़ी ही सहसा बोला, देखो दादाजी बैठे हैं, बुला लाओ, कहाँ मैं जरूरी काम से बुला रही हूँ, वो जरूर आएंगे। मैं एक आज्ञाकार पुत्र की तरह इकट्ठा दौड़ कर गया और उन्हें बुला लाया। माँ ने उन्हें कुछ समझा कर और वह पोटली उनके हाथ में बड़ी इतमिनती तानने नजर से हो गई। मैं उनके हाथ पकड़ कर उनके साथ साथ चला दिया और ईरी सोने के दुकान में गया। सोना दादाजी को देखते हुए खड़ा हो गया और आने का कारण पूछा, क्या बात है भैया सवेरे सवेरे इधर। दादाजी ने पोटली में माँ के दोनों कंगन को निकाल कर उनके हाथ में थमा दिया और सारी बातें समझा दी। उसे सुनकर ने तराजू में वजन किया सामने को और 35 रुपए निकाले कि दादाजी के हाथ में थमा दिया। मुझे काफी दुखी हुआ, लेकिन मैं इसे अंदर ही अंदर पी गया, आंसू से रूप में बाहर नहीं निकालने दिया। ऐसी थी मेरी माँ। आज उनके गुजर हुए 24 साल हो गए और इस घटना के 53 साल हो गया, लेकिन मेरे मन में काफी अनजान कौन में जो दर्द छुपा हुआ है। ऐसी थी मेरी माँ। आज उनके गुजर हुए 24 साल हो गए और इस घटना के 53 साल हो गए, लेकिन मेरे मन में किसी अनजान कोने में जो दर्द छुपा हुआ है, जब वह उठता है तो सहन नहीं कर पाता, वह मैं खुद झेलता हूँ। माँ का याद करके जब रोता हूँ तो ऐसा एहसास होता है कि वह मेरे करीबी है। माँ ने जो मेरे लिए इतना कुछ किया, उनसे मैं कभी उरी नहीं कर सकता। ऐसी थी मेरी माँ।
0: गुरु हमें सिर्फ सीख ही नहीं देते हैं, बल्कि हमारे अंदर की कला को बाहर निकालते हैं। तो अभी चांदी आर आप सबके साथ थोड़ी पहेलियां लेकर आई है।
5: कली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाक नहीं, पलखाती है पर डोर नहीं, बांधते हैं पर डोरी नहीं, बताओ क्या? छोटी। बीमार नहीं हूँ मैं, फिर भी खाती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर इसकी बोली, बंदूक। धूप देख मैं आ जाऊं, छाव देख शर्मा जाऊं, जब हवा स्पर्श करे उसमें समा जाऊं, पसीना। एक पिता अपने बच्चे को गिफ्ट देते समय कहता है कि जब प्यास लगे तो पी लेना, भूख लगे तो खा लेना, और ठंडी लगे तो जला लेना।

0: ये बच्चे अकेले आने से डरते हैं। चुटकुला 3। ट्रैफिक पुलिस। एक बूढ़ी औरत बिना लापरवाही से सड़क पार कर रही थी, उसे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस, मैं इतनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देता? बूढ़ी औरत, क्यों नहीं सुनाई देगा, मैं बहरी नहीं हूँ। ट्रैफिक पुलिस, तो आप रुक क्यों नहीं गए? बूढ़ी औरत, बेटा आप सीटी सुनकर रुकने की उम्र नहीं है मेरी।
1: अब हमारी छात्राएं कृषाली, सेजल, महिमा, युक्ति और दिव्या अपनी सुरीली आवाज में आप सभी को अपनी धुनों में नचाने आ रही हैं।

अब हम आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए आपसे विदा लेने चाहते हैं और अगली बार हम आपसे इसी समय इसी वक्त MOP 107.8 FM में बातचीत करेंगे। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।

किसे देता है ये जहां सम्मान, वो कौन है जो करता है देश का निर्माण, वो कौन है जो बनाता है इंसान को इंसान, वो कौन है जिसकी छाया में मिलता है ज्ञान, वो कौन है जो कराए सही दिशा की पहचान, वो है शिक्षक जिसे शत शत प्रणाम। रंगीला की ओर से सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे।

जय जिनेन्द्र, नमस्ते, सस्त्याकाल, वनकम और आदाब। मैं एमओपी वैष्णव कॉलेज फॉर वुमेन से आरजे याशिका डोशी और आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8। अब इस शिक्षा दिवस की शुरुआत हम एक प्रार्थना से करना चाहेंगे और वो तेजस्विनी गाएंगे।

0: बहुत खूब। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीर्ति धन भला, गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। इसी के साथ अब हम एक भाषण प्रस्तुत करना चाहेंगे पायल और नेहा के साथ।
1: नमस्ते, मैं पायल आज शिक्षक दिवस के दिन मैं सभी शिक्षकों का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। भारत भूमि पर अनेक शिक्षकों ने अपना ज्ञान में हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। उनकी महानता यह थी कि वह सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज को अनेक बुराइयों से मिटाया जा सकता है। ऐसी महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जब 1962 में राष्ट्रपति बने तब कुछ शिक्षकों ने एवं प्रशंसकों ने उनसे निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेहा, आप हमें और बता सकते हैं शिक्षक दिवस के बारे में?
2: हाँ, नमस्ते। शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का भी यही दिन है। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक का कार्य छात्र खुद ही संभालते हैं। इस दिन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर शिक्षण के प्रति समर्पित और छात्र छात्राओं के प्रति अनुराग कर रखने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में मददगार साबित होते हैं, वही वे राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण भी है। वे बालकों में सुसंस्कार तो डालते ही है, उनके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उन्हें देश का श्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व भी वहन करते हैं। शिक्षक राष्ट्र के बालकों को न केवल साक्षर ही बनाते हैं बल्कि अपने उपदेश द्वारा उनके ज्ञान का तीसरा चक्षु भी खोलते हैं। वे बालकों को हित अहित, भला बुरा सोचने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे राष्ट्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक उस दीपक के समान है जो अपनी ज्ञान ज्योति से बालकों को प्रकाशमान करते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक महर्षि अरविंद के विचार में शिक्षक के संबंध में लिखा है, अध्यापक शास्त्र की राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं। वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम में उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। संत कबीर ने तो गुरु को ही ईश्वर से भी बड़ा माना है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाको पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक को आदर देना समाज और राष्ट्र में उनकी कीर्ति को फैलाना केंद्रीय व राज्य सरकारों का कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है। इस दायित्व को पूरा करने का शिक्षक दिवस एक अच्छा दिन है। गुरु से आशीर्वाद लेने की भारत की अत्यंत प्राचीन परिपाटी है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा नाम इसी से निमित्त दिया जाता है। स्कूलों कॉलेजों के अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इस दिन समारोह आयोजित किया जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े समारोह में राजधानी के स्कूलों से चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद, आप सबको शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद नेहा और पायल। आज शिक्षा दिवस है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि महान शिक्षक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ ना कहे। इसी के लिए हम अन्नपूर्णी और तेजस्विनी को बुलाना चाहेंगे।
4: नमस्कार, शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहते हैं। वे हमारे देश के एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबिदीन अब्दुल कलाम है। वे पहले ऐसे गौर राजनीतिक राष्ट्रपति थे जिनके राजनीति में आगमन विज्ञान और टेक्निक के श्रेष्ठ में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण हुआ। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इसके पिता जैनुलबुद्दीन एक कम पढ़े लिखे और गरीब नाविक थे। वे नियमों के पक्ते और उदार स्वभाव के इंसान थे जो दिन में 4 बार नमाज पढ़ते थे। अब्दुल कलाम के पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर का गुजारा चलाते थे। परिणाम स्वरूप बालक अब्दुल कलाम को अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए घरों में अखबार वितरण करने का कार्य करना पड़ा। बचपन में ही उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उनका लक्ष्य विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में उन्नत करना ही है, जिसके लिए उन्होंने कॉलेज में बायोटेक विज्ञान विषय को चुना। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई सपना की।
3: क्या आप हमें एपीजे अब्दुल कलाम के पुरस्कार मतलब उनसे उनको किस किस से सम्मानित किया गया यह बता सकते हैं?
5: एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के नागरिक ने पद्म विभूषण तथा भारत रत्न प्रदान किया। वे एक सामान्य परिवार से के संबंधित असामान्य शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने एरोनॉटिक क्षेत्र में भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा लिया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिलने का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही प्राप्त हो गया था। उनकी निधन 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में रहने योग्य ग्रह या क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर एक व्याख्या दे रहे थे जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में आईसीयू में लिए गया था और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु हुई। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही इन्होंने बताया था कि वे शिलोंग में लेक्चर के लिए जा रहे थे। वे अपने जीवन भर शिक्षा पढ़ाते हुए ही मरना चाहते थे और वैसा ही हुआ। वे इस पृथ्वी से तो चले गए लेकिन हमारे मन में हमेशा रहेंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्विनी और अनपूर्णी। गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब कुछ कविताएं प्रस्तुत करने के लिए मैं शक्ति देवी को बुलाना चाहूंगी।
6: नमस्ते, मैं शक्ति देवी शिक्षक दिवस पर एक कविता सुनाने वाली हूँ। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो है इंटरनेट पे हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं उसमें है बड़ा योगदान, आप सबका जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान। आपने बनाया है मुझे इस योग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय अपने सहारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हारा। पर मैं हूँ कितना मतलबी, याद किया ना मैंने आपको कभी। आज करता हूँ दिल से आप सबको प्रणाम, आज करती हूँ दिल से आप सबका सम्मान। आप सबको है मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।
3: बड़ा ही खूब कहा है, शिक्षक एक मार्गदर्शक बन के हम विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाते हैं। बहुत खूब, बड़ा ही खूब कहा है, शिक्षक एक मार्गदर्शक बन के हम विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाते हैं। बहुत खूब। कहते हैं शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होती है, खुद को गाल कर वह हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले जाते हैं। अब हम कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहेंगे नीलम के द्वारा।
7: नमस्ते, मैं हूँ नीलम और मैं आज अपने गुरु शिक्षकों के आदर में कुछ दोहे बताना चाहती हूँ। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पहर निरखता रहे गुरु मूर्ति की ओर।
3: नीलम, क्या आप हमें इस दोहे का अर्थ समझा सकती है ताकि हमारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए?
7: जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है, वैसे ही हमें भी गुरु मूर्ति की ओर श्रद्धा और भक्ति से निहारता रहना चाहिए।
3: बहुत खूब।
7: मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन हाई, मूल सत्य सत्य भाव। हमें अपने गुरु के रूप की पूजा करनी चाहिए, उनके कमल जैसे पैर को प्रणाम करना चाहिए, वचन को पालन करना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। साधु शब्द समुद्र है, जामे रत्न भराए, मंद भाग मट्टी भरे कंकर हाथ लगाए। किसी साधु के कहे हुए वचन समुद्र की पानी को गहराई के समान है और मंद बुद्धि इंसान बस कंकर को हाथ लगाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
3: ये तो संत कबीरदास जी का दोहा है ना?
7: हाँ जी, कवि कहते हैं कि हमें अपने गुरु के पाँव पड़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर का मतलब बताया है। गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाए तो पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए क्योंकि वो ही भगवान तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इलम, आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आप ही को हमने है गुरु है माना, सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे ही है जाना। अब कुछ हंसी मजाक हो जाए, हम मुस्कान को बुला चाहेंगे थोड़े चुटकुले सुनाने के लिए।
8: जी नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान, मैं आपको थोड़ा हंसाने वाली हूँ, थोड़ा हंसी से रुलाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। एक मैं अभी शिक्षकों के बारे में आपको चुटकुले सुनाऊंगी। पहले शिक्षक कहता है बच्चों शिष्यों से, ये बताओ इंडिया से सबसे पहले फॉरेन कौन सी महिला गई थी। शिक्षक बोलते हैं, सर सीता माँ, वो बिना पासपोर्ट और वीजा के श्रीलंका गई थी।
3: बहुत खूब।
8: दूसरा शिक्षक कहती है, तुम इन दिनों स्कूल क्यों नहीं आए। विद्यार्थी कहता है, मैम बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर यानी शिक्षक, लेकिन ये तो पक्षियों की बीमारी होती है। विद्यार्थी, आपने मुझे इंसान छोड़ा का मैम, रोज तो मुर्गा बना देती हो।
3: ये तो हर क्लास में होता होगा।
8: हाँ हाँ होता है होता है। तीसरा शिक्षक कहते हैं, मुझे खुश फैमिली का मतलब बताओ। छात्र कहते हैं, सर पीछे मैम आपको बुला रही है। टीचर उसी वक्त मुड़ के देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विद्यार्थी, सर इसी का नाम खुश फैमिली है। शिक्षक, सब अपनी ड्राइंग बुक निकालो और ट्रेन बनाओ। मैं 5 मिनट बाद
3: ट्रेन।
8: ड्राइंग बुक में जो प्राइमरी बच्चे ट्रेन बनाते हैं ना।
3: अच्छा
8: हाँ। स्टूडेंट, जी मैम बड़े आदर से। टीचर फिर 10 मिनट बाद आती है और पूछती है कि क्या तुम लोगों ने ट्रेन बनाया। विद्यार्थी, मैम आप लेट आए हो, ट्रेन तो कब की निकल गई।
3: बड़े चालाक है विद्यार्थी।
8: आजकल के विद्यार्थी बहुत चालू है। शिक्षक, बच्चों वाटर का फॉर्मूला बताओ। ये तो केमिस्ट्री टीचर थी। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, HIJKLMNO। टीचर, शिक्षक ये क्या था। विद्यार्थी

0: मैम आपने ही तो कहा था कल कि वाटर का फॉर्मूला H2O है।
1: अच्छा तो वो 2TO वाला हो गया।
0: शिक्षक मुझे ऑटोमेटिकली का मतलब बताओ। विद्यार्थी मैम मैं बताऊं? शिक्षक हाँ बताओ शाबाश। विद्यार्थी मैम ऑटो में टकली जा रही थी। शिक्षक ये क्या बोल रहे हो? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी मैम ऑटोमेटिकली।
1: बहुत खूब, और भी है कि बस?
0: नहीं नहीं एक और है। टीचर लैब में बच्चों को तेजाब की प्रक्रिया बता रहे थे, तेजाब एसिड, और पूछते हैं कि तेजाब में क्या ये 5 रुपए का सिक्का घुलेगा या नहीं। तब एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर। सर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? सर वो कहते हैं सर ये नहीं घुलेगा क्योंकि ये आपने अपनी जेब से निकाला है, अगर घुलता तो आप हमसे मांगते।
1: बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बहुत हंसाने के लिए।
0: थैंक यू।
1: कुछ स्वादिष्ट कुछ हो जाए तो अब हम सूर्या और चांदनी को बुलाएंगे कुछ स्वादिष्ट अपने शिक्षकों के बनाने के लिए।
2: नमस्ते मैं हूँ सूर्या और मेरी दोस्त चांदनी आज आपको चटपटा सैंडविच बनाने का विधि बताएंगे। चटपटा सैंडविच का सामग्री, पहले हरा पुदीना, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, एक छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच मायोनीज, 1/2 कप गोभी, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप टमाटर। अब चांदनी आपको चटपटा सैंडविच का विधि बताएंगी।
3: पहले पुदीना, नींबू का रस, सफ़ेद मिर्च, नमक, हरी मिर्च को मिक्सी में पीस ले। इसके बाद हमारी चटनी तैयार है। अब ब्रेड के पीस लेकर उसके ऊपर मेयोनीज चटनी लगाइए। अब सब्जियों को काट कर ब्रेड पर रखें और उसके ऊपर ब्रेड का दूसरा पीस रखें। अगर आप चाहे तो इस पर चीज लगाकर टोस्ट भी कर सकते हैं। अब आपकी स्वादिष्ट चटपटा सैंडविच खाने के लिए तैयार है।
1: सुनने में तो बहुत चटपटा है, जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं विद्यार्थियों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपने शिक्षकों के लिए ऐसा कुछ बनाकर उन्हें बहुत खुशियां दें। अब आज का यह कार्यक्रम मैं RJ याशिका दोषी समाप्त करना चाहूंगी एक गाने से। पर एक बार फिर MOP कॉलेज हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी शिक्षकों को शिक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने से पहले मैं शिक्षकों के लिए 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। बुद्धिमान को बुद्धि देती और अज्ञानी को ज्ञान, बुद्धिमान को बुद्धि देती और अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान, मेरा देश महान। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8। आर रेडियो आर कम्युनिटी आर प्राइड। धन्यवाद।